चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पासो हम की रे करम सतगुर शरणाई।

कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप सजम भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारू असिख संघरो। दुष्ट जिते पुठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख्त हव मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याए है, ताके काल निकट नह अह। अच्छा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टराए तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट छा छब सक न कोई।

राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी करू मैं न कहो सब तोहे बखाने दोहरा।

विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए उधारो ये वस्तु तजी न जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग त्रिय सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा।

पाई को कह चाव पाई संबत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहस फुन तीन कही जय। भाद्रव सुधी अष्टमी रमवारा तीरस्तद्रव ग्रंथ सुधाराओ सवैया। पाए गह जबते तुमरे तबते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत। एक न माने उसे मृत शास्त्र वेद सब वह भेद कह हम एक न जाने। श्री असमान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखाने दोहरा। सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहार द्वार बाह गह की लाज अस गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के

बिन रहन न जाए, मेरा हो किस तेरा हर बिन रहन न जाए, ना कोई मेरा हो किस तेरा